भाइ बहिनी फुटे गमरले लुटुलन है शिर हाम्रो झुके बहिरीले कुटुलन है।

आवाज विहीन को आवाज परिवर्तन को संवाद रेडियो दीदी बहिनी 95.2 MHz। थाह संचार नेटवर्क मा यो हो नेपाल परिवेश समय को आवाज।